हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आज शुक्रवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह पेश किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है, उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है। सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन अभी आपने सुना। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। अनहेल खुर मोर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं। शुक्रवार का दिन है, माता जी का दिन है, तो आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। चले अगला भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुंदर सा माता जी का भजन आप सुनते ही रहना सोनू निगम की आवाज में।

निगम, सोनू निगम की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड के जरिए, कंप्यूटर के जरिए हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और साथ ही साथ सुनने वालों, दुनिया की कोने कोने में सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। चले प्रोग्राम में एक संतोषी माँ का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में ये भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज की इस भजन

सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। बहुत से सुनने वालों इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं, भजन यात्रा प्रोग्राम जो हर सुबह आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार एक भजन पेश किया जा रहा है, अति सुंदर भजन है, सोनू निगम की आवाज में, जरूर आप सुनते ही।

निगम की आवाज में अभी आपने सुना आसरो मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये खास भजन जो पेश की गई है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड की जरिए कंप्यूटर की जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। दुनिया की कोने कोने में और दुनिया की कोने कोने में भी इंटरनेट रेडियो की जरिए हर एक इंटरनेट रेडियो की जरिए भी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

और अति सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं सुंदर सा चालीसा की ओर। श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से।

सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पीस की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार नीरज श्रीधर एंड सुनिधि चौहान के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए। ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की आवाज में। गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में शान और सुनिधि चौहान होगा प्रोग्राम में।

आपने सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल प्रोग्राम में अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले कुमार सानू जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आश्रो मीठे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। अतीफ असलम की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना अतीफ असलम की आवाज में आपने सुना और बेहद पसंद किया है। विनोद राठौर एंड साधना सरगम प्रोग्राम में

सुन वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। 9:00 प्रोग्राम में 1 मिनट वेटेड हो चुका है, 1 मिनट ओवर

प्रोग्राम यहां से पेश किया जाएगी आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। और सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है ठीक 12 बजे से बस प्रोग्राम में फरमाइश से आप सभी सुनने वालों की सेवा में भी पेश किया जाएगी। तो फरमाइश का प्रोग्राम जो है ठीक

व पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगा। बजकर 3 मिनट व्यतीत हो चुका है, चले प्रोग्राम में पहला पुरानी फिल्म का गीत की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस पेश किया जा रहा है।

पेशी गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे अब की बार प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS के जरिए जरूर आप सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में मिलकर सुनते हैं प्रसून मुखर्जी की आवाज में हेमंत कुमार का एक खास गाया हुआ गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है।

प्रसून मुखर्जी की आवाज में ये गाना पेश की गई हेमंत कुमार का खास गाया हुआ गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए द माइटी मुकेश प्रोग्राम में। माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-2-62-66-11। चले अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए। पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में आशा भोसले एन मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं, उसी खास फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। आशा जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे मुकेश और लता जी की आवाज में एक गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

मुकेश और लता जी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। फरमाइशी इश्तिहारे जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी कामोकाज आपको पेश करवाना है, सस्ती दामों में आपके हर एक कामोकाज किया जा रहा है। सभी इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए 0322656560 टेलीफोन नंबर होता है। मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर

the man with the every queen voice, Kishore Kumar. और खास तौर पर लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, दिल की बातें दिल ही जाने।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए दिल की बातें दिल ही जाने रेडियो SBS की जरिए ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है माइटी मुकेश, माइटी मुकेश की आवाज में जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का नाम, गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

द माइटी मुकेश के आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है ठीक 12 बजे से बस प्रोग्राम में फरमाई से आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। ठीक 12 बजे से बस प्रोग्राम में फरमाई से आप जरूर और जरूर प्रोग्राम में सुनते ही रहना। गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में मुकेश और लता जी की आवाज में चले ये गाना को सुनते हैं। और गाना का बोल है हम सफर मेरे हम सफर। मुकेश एंड लता प्रोग्राम में पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में ये गाना।

पर मशहूरी मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बजपेश की गई। फिल्म का नाम मधुमती। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-22-66-66-11 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। चले फिल्म मैं चुप रहूंगी उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में।

0: का नाम था मैं चुप रहूंगी। चलिए आज के ये प्रोग्राम में अब की बार मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, और अब की बार हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम है मजबूर।
1: मैं

दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, सब कुछ भूल जाना आसान है, सब कुछ भूल।

गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। अनोखी अदा फिल्म का नाम होगा आपकी बार मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की ओर हम आपको ले चलते हैं और आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। सुमन कल्याणपुर एंड मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

श्री मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। चले मोहम्मद रफी और आशा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

फियोना शर्मा की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे और वो भी खास तौर पर शमशाद बेगम और तलत महमूद जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और अब की बार फिल्म बाबुल का गीत पेश किया जा रहा है।

तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में अबकी बार ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस के जरिए।

और रेडियो एसबीएस के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मन्ना डे और लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

इसमें इसकी सर ये गाना बस भी इसकी गई मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में। आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले अब की बार मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

जो भी इसके गए सुमन कल्याणपुर और द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकेश के आवास में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए फिल्म मिलन की ओर हम आपको ले चलते हैं, खासतौर पर मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

ज्यादा बीच की गई मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारे बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। सभी को स्वागत किया जा रहा है, वेलकम, और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। आपकी फरमाइश हुआ इस तिहारे जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर जो 24 पर दाग बार एक बार होता है 0325656560। इसी तारीखी नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में, और फिल्म का नाम है अदालत।

रिलीज की गई फिल्म का नाम अदालत उसी फिल्म से अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और लता की आवाज में ये खूबसूरत प्यार भरी गाना पेश किया जा रहा है। और अब की बार हम आपको ले चलते हैं, फिल्म का नाम है जिगरी दोस्त, मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में।

छोटे मियाँ लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड आदित्य नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑफ हेट पोडियम बिलीव एन अनवर्गेटलिके अवन वोल इकोनिसे बॉलीवुड हिट्स प्रachtige म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम टॉप निवो रुक जाओ दिल दीवाने Zondag 15 november in Rotterdam Ahoy RTM Stage. 2 generaties, 1 podium, een onvergetelijke avond. Mis deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chotemia. Live in concert Udit.

प्रोग्राम में 7 मिनट व्यतीत हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शुक्रवार 2 तारीख अक्टूबर है और आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है अभी 12 बजे से बस प्रोग्राम में फरमाइश पेश किया।

गुलाम अली की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एडो फिल्म बेवफा फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की

जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।

में अभी आपने सुना खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड की जरिए कंप्यूटर की जरिए आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें भी होते हैं, मौसमी समाचार और अपना दाह होरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र के लिए जरूर आप उसी वेबसाइट पर जाइए।

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू और

रेडियो SBS की जरिए ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, बाहर का मौसम की ओर देखा जाए, खूबसूरत सुहाना मौसम है और इस मौसम में आज शुक्रवार का प्रोग्राम बहुत सी सुनने वालों बस सुनते हैं, सभी को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। आपको हम खबर करना चाहेंगे कि अभी 12 बजे से बस प्रोग्राम में फरमाइश है आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी और रेडियो SBS की जरिए तो प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सोनू निगम एन शरिया प्रोग्राम में, इस गाना के बाद प्रोग्राम में खबरें होगा, रिक्लाम न्यूज, मौसमी समाचार और फकीर से इन्फॉर्मेशन, उसके बाद तुरंत प्रोग्राम में हम लेकर के आने वाले हैं फरमाइशें।

तुरंत यहां से प्रोग्राम में हम लेकर के आने वाले हैं आपकी फरमाई से, यानी कि फरमाई से बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी रेडियो SBS की जरिए। उत्तराखंड शहर की रहने वाली माता श्री महदा नुंदा राम खेलावन की आज शुक्रवार 2 तारीख अक्टूबर 69 फरियादा है। माता श्री महदा नुंदा राम खेलावन आज 90 साल यानी कि 69 हुआ है। रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से माता श्री महदा नुंदा राम खेलावन 69 फरियादा लाख लाख बधाई हो, शुभकामनाएं हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से।

Liverpool, zo, zo, zo. बस यहां से प्रोग्राम में पहला फरमाइश की ओर हम बढ़ चुके हैं। यूट्रेख्त शहर की रहने वाली, यूट्रेख्त ओवरवेक्ट शहर की रहने वाली माता श्री मगदा नुंदा राम खिलावन की आज शुक्रवार 2 तारीख अक्टूबर 69 फरियारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर यारख माता श्री मगदा नुंदा राम खिलावन खुद अपने लिए 69 फरियारदाग की खुशी के मौके पर ये गाना को फरमाइश कर रहे हैं। जिंदगी प्यार का गीत है, उसको हरदम ही गाना पड़ेगा।

उत्तराखंड शहर की रहने वाली माता श्री माखदा नुंदा आराम खेलावन की आज शुक्रवार 2 तारीख अक्टूबर फंडाग फ्राइडाग 2 अक्टूबर 90वां फरियारदाग जन्मदिन है। और खबर मिला है कि आज रात्रि में सभी परिवारों मिलजुल कर बड़ी ही धूमधाम बड़ी ही समारोह के साथ बस मनाने वाले हैं। इसी खुशी के मौके पर यारख माता श्री माखदा नुंदा राम खेलावन खुद अपने लिए नई खंतख्त फरियारदा की खुशी के मौके पर ये खास गाना को फरमाइश कर रहे थे। उत्तराखंड शहर की रहने वाली माता श्री माखदा नुंदा राम खेलावन की आज शुक्रवार 2 तारीख अक्टूबर 90वां फरियारदाग है। इसी खुशी के मौके पर लड़कन सुरेश सुनील मीला और किशन अपने प्यारी प्यारी माता श्री के लिए 3 पतों और 1 दामाद के तरफ से अपने प्यारी प्यारी सास की जन्मदिन की खुशी के मौके पर ढेर सा प्यार दुलार देते हुए ये गाना को फरमाइश कर रहे हैं लाख लाख बधाइयां के साथ।

Utrecht overvecht je herkeer rechne valle matasheri Magda Nunda Ramkelaven kia Sugarwar do tarikh oktober 90ste verjaardag jaramdin hai isi khushi ke mauke par larkan Suresh Sunil Mila aur Kishan ke taraf se apne pyari pyari matasheri ke liye teen patu aur ek damad ke taraf se apne pyari pyari saas ki jaramdin ki khushi ke mauke par lakh lakh badhai shubhkamnaye ke sath dheer sa प्यार दुलार देते हुए ये गीत को फरमाइश कर रहे थे। Utrecht overvecht शहर की रहने वाली यारख माताश्री मागदा नुंदा रामखेलावन की आज शुक्रवार 2 तारीख अक्टूबर फंडाग फ्राइडाग 2 अक्टूबर 90ste verjaardag है जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर यारख माताश्री मागदा नुंदा रामखेलावन खुद अपने लिए 90ste verjaardag की खुशी के मौके पर ये सुंदर सा भजन को फरमाइश कर रहे हैं।

Utrecht over vecht शहर की रहने वाली माता श्री मगदा नुंदा राम खिलावन की आज शुक्रवार 2 तारीख अक्टूबर 69 फरियारदाग जन्मदिन है। आज माता श्री मगदा नुंदा राम खिलावन 90 साल के हुए हैं 90 यार। इसी खुशी के मौके पर यारख माता श्री मगदा नुंदा राम खिलावन खुद अपने लिए ये सुंदर सा भजन 90 सफर यारदा की खुशी के मौके पर बस फरमाइश कर रहे थे। उत्तराखंड शहर की रहने वाली यारख माता श्री मगदा नुंदा राम खिलावन की आज शुक्रवार 2 तारीख अक्टूबर 90 फरियारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर सोहेब अदनान और श्रेया की तरफ से अपने प्यारी प्यारी नानी के लिए, कीर्ति और निखिल की तरफ से प्यारी प्यारी आज ही की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामना बस पेश कर रहे हैं ये गाना के साथ। और अपने नानी और आजी से यही कहते हैं सभी मिलकर, नानी आजी

उत्तराखंड शहर की रहने वाली माता श्री मखदा नुंदा रामखेलावन की आज शुक्रवार 2 तारीख अक्टूबर निखंतस्त फरियारदा जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर सोहेब अदनान और श्रेया के तरफ से अपने प्यारी प्यारी नानी के लिए, कीर्ति और निखिल के तरफ से प्यारी प्यारी आजी की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामनाएं के साथ ये गाना बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और भी फरमाइश बस प्रोग्राम में सुनते ही रहना। यारख माता श्री मखदा नुंदा राम खेलावन जन्मदिन नीखन तख्त फरियारदा लाख लाख बधाई हो शुभकामनाएं हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। उत्तराखंड ओवरवेख शहर की रहने वाली माता श्री मखदा नुंदा राम खेलावन की आज शुक्रवार 2 तारीख अक्टूबर नीखन तख्त फरियारदा जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर यारख माता श्री मखदा नुंदा राम खेलावन खुद अपने लिए नीखन तख्त फरियारदा की खुशी के मौके पर ये गीत को फरमाइश कर रहे हैं।

Utrecht overvecht, Shahrkeer Rechne Valley, Matashre Magda, Nunda Ram Kilavan Kiaj, Shukarwar 2 tarikh oktober, 90ste verjaardag, Janamdin He, Isi Khushiki Maukeber, Yarache Matashre Magda, Nunda Ram Kilavan. खुद अपने लिए जन्मदिन की खुशी के मौके पर 90ste फरियादा की खुशी के मौके पर ये खास गाना को फरमाइश कर रहे थे। उत्तरेख ओवरवेग शहर की रहने वाली माता श्री मागदा नुंदा राम खेलावन की आज शुक्रवार 2 तारीख अक्टूबर 90ste फरियादा जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर लड़कन सुरेश सुनील मीला और किशन के तरफ से अपनी प्यारी प्यारी माताश्री के लिए 3 पतु और 1 दामाद के तरफ से अपनी प्यारी प्यारी सास की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामनाएं के साथ ये गीत को फरमाइश कर रहे हैं।

Utrecht overvecht Shahrkeye Rehnevali. Mata Shri Magda Nunda Ramkelavan Kia Shukarwar 2 tarikh oktober 90ste verjaardag janamdin hai. Isi khushi ke mauke par Larkan Suresh Sunil Mila aur Kishan ke taraf se apni pyari pyari Mata Shri ke liye 3 patu aur ek damad ke taraf se apni saas ki janamdin ki khushi ke mauke par lakh lakh badhai shubhkamnaye ke sath ye geet ko farmaish kar रहे थे। उत्तराखंड शहर की रहने वाली यारख माता श्री मगदा नुंदा राम खिलावन की आज फ्राइडे 2 अक्टूबर 90ste verjaardag जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर यारख माता श्री मगदा नुंदा राम खिलावन खुद अपने लिए 90ste verjaardag के मौके पर ये गीत को फरमाइश कर रहे हैं।

Utrecht overvecht je her kie rehne wali. Mata Shri Magda Nunda Ramkelaven ki aaj shukarwar 2 tarikh oktober 90ste verjaardag janamdin hai. Isi khushi ke mauke par yarige Mata Shri Magda Nunda Ramkelaven khud apne liye 90ste verjaardag ki khushi ke mauke par ye khas gana bas program mein farmaish kar rahe the. Utrecht शहर की रहने वाली माता श्री मखदा नुंदा रामखेलावन की आज फ्राइडाग 2 अक्टूबर 90ste verjaardag जन्मदिन है. यारखे माता श्री मखदा नुंदा रामखेलावन आज 90 साल 90 यार हुए हैं. इसी खुशी के मौके पर लड़कन सुरेश सुनील मीला और किशन यानी कि लड़कन सोहेब अदनान और श्रेया अपने नानी के लिए कीर्ति और निखिल के तरफ से अपने प्यारी प्यारी आज ही की जन्मदिन की खुशी के मौके पर लाख लाख बधाई शुभकामनाएं के साथ ये

Utrecht overvecht. Shahriki rechne wali, matashri magda, nunda ramkelaven kiaat shukarwar do tarikh, oktober 90ste verjaardag. Janamdin hei si khushike mauke par. Soheb Adnan aur Shreya ke taraf se apne pyari pyari nani ke liye, Kirti aur Nikhil ke taraf se pyari pyari aaj ke janamdin ki khushi ke mauke par lakh lakh badhai, shubhkamnaye ke saath ye geet ko farmaish kar rahe the. रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और भी फरमाई से बस प्रोग्राम में सुनते ही रहना. यूट्रेख्ट ओवरवेक्ट शहर की रहने वाली यारख माताश्री मखदा नुंदा राम खिलावन की आज शुक्रवार 2 तारीख अक्टूबर 90ste फरियारदाग जन्मदिन है. और खबर मिला है कि यारख माताश्री मखदा नुंदा राम खिलावन अपने 90ste फरियारदाग 90 साल के जो हुए हैं, आज रात्रि में बड़ी ही धूमधाम बड़ी ही समारोह के साथ सभी परिवारों मिलजुल कर बस मनाने वाले हैं. इसी खुशी के मौके पर यारख माताश्री मखदा नुंदा राम खेलावन खुद अपने लिए 90ste फरियारदा की खुशी के मौके पर ये खास सुंदर भजन बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता. सुंदर सा भजन बस फरमाइश किए हैं अपने नई खंतक्ष्त फरियारदा की खुशी के मौके पर.

Utrecht overvecht hier in de Wallië. Matashri Magda Nunda Ramkhilavan Gheaad Shukarwar doet haar in oktober 90ste verjaardag Janamdeed hem. Isi khushke mauke per jarige Matashri Magda Nunda Ramkhilavan goed apne liye 90ste verjaardag ki khushke mauke per ye sundar sa bhajan bas program mein farmaish kar rahe the. Utrecht शहर की ये रहने वाली माताश्री मगदा नुंदा रामखेलावन की आज शुक्रवार 2 तारीख अक्टूबर 90ste फरियारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर आखिरी फरमाइश जो पेश किया जा रहा है और वो भी यारख माताश्री मगदा नुंदा रामखेलावन 90ste फरियारदाग की खुशी के मौके पर खुद अपने लिए अपना पूरा परिवार सभी लड़कन के लिए ये सुंदर सा भजन आज की प्रोग्राम में बस फरमाइश कर रहे हैं।

सावन के आज शुक्रवार 2 तारीख अक्टूबर 90वां फरियारदाग जन्मदिन है। इसी खुशी के मौके पर यारख माता श्री मखदान नुंदा राम खिलावन खुद अपने लिए 90वां फरियारदाग की खुशी के मौके पर और अपना पूरा परिवार अपने सभी लड़कन के लिए ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में फरमाइश कर रहे थे। इसी तरह से प्रोग्राम में आखिरी फरमाइश बस पेश की गई यारख माता श्री मखदा नुंदा राम खिलावन के लिए। रेडियो एसबीएस का पूरा टीम के तरफ से जन्मदिन ला

और हर साल इसी तरह से अपना जन्मदिन को आप मनाते रहे पूरा परिवार के साथ। रेडियो SBS के जरिए आपकी फरमाइश से बस पेश की गई है, एक बार फिर से बधाइयां ही बधाइयां पेश किया जा रहा है, खासतौर पर मेरे तरफ से खिदमत गुजार रबीन के तरफ से और हमारा पूरा परिवार के तरफ से भी। बस रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से माता श्री मखदा नुंदा राम खिलावन नई खंतख्त फरियादा की खुशी के मौके पर ये सुंदर भजन बधाइया ही बधाइया के साथ बस

किया आवास में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था झुक गया आसमान। सुनने वालों बाहर का मौसम की ओर देखा जाए, खूबसूरत सुहाना मौसम है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 6:04 12:30 स्टूडियो टाइट हो चुका है। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर। फिल्म प्यार की कहानी। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-2266-66-11।

रेडियो एसबीएस के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। फिल्म प्यार की कहानी उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में मोहम्मद रफी और अब की बार आशा जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है, द मूवी ममता।

रेडियो SBS के जरिए मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। स्टूडियो के अंदर काफी टार आते रहते हैं, बस सभी को शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी टार कर रहे हैं और हमारा ये प्रोग्राम को सुनते हैं। मक्कार फिल्म का गीत पेश होगा किशोर कुमार एंड

ये गाना पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप तक पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। यसुदास एंड किशोर कुमार या कहिए यसुदास और लता जी प्रोग्राम में है त्रिशूल।

यसुदास और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। तकरीबन 2 बजे तक हमारा प्रोग्राम रहेगा।

की आवाज में गाना वो पेश की गए, नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। सुनो बोलो, एक आखिरी गाना बस प्रोग्राम पे पेश होगा और उसके बाद मैं आप सभी सुन वालों से इजाजत और आज्ञा चाहूंगा। एक आखिरी गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी किशोर कुमार की आवाज़।

सुनने वालों, बस हमारा प्रोग्राम यहीं से खत्म होने पर आ गए हैं। आज का प्रोग्राम सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे कल सुबह ठीक 8 के वक्त प्रोग्राम लेकर के। तब तक के लिए इजाजत और आज्ञा दीजिए, मत भूलना अभी प्रोग्राम आगे तक भी करने वाली है। एक एक्त आर जे जो सालों से आप सभी सुनने वालों को सेवा और खिदमत कर रहे हैं, एनिगे एक्त आर जे जो होता है आर जे अंशुली के जरिए बस प्रोग्राम पेश किया जाएगी। उसके बाद रात्रि में 8 बजे से लेकर के और 12 बजे तक नॉन स्टॉप किसी तरह हॉटेस्ट नगमे, हॉट गाने, बैठक गाना, रिमिक्स, लोकल गाने आप सभी के लिए पेश किया जाएंगे। किसी तरह मिलेंगे कल, बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। बाकी का दिन शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशुली रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिट इज यू आर जे अंशुली रामलाल, दू यू हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। विल टू रिएगेरन कैन इट ऑलवेज, सर्व मा नार द वेबसाइट www.radiosbs.nl ऑफ बेल गरुस्ट मेट द स्टूडियो नार 032 62 66 11। Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag, en dat is...

कौन मैं? हाँ तुम, बस तुम। ओफो, वास आउट द फिल्म अजनबी एंड आउट द फिल्म चौदह फेरे कंठ सौंधो रेखा भारद्वाज राम सीता संग द्वारे।

मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे, राधा कैसे न जेले बस अर्ध फिल्म लगान। एन अर्ध फिल्म प्यार तूने क्या किया कॉम्थ सॉन्ग दूर सोनू निगम एंड अलका याचिक द टाइटल सॉन्ग।

सुना है तेरे दिल पे मेरे, कहीं ना कहीं नाम लिखा है इस सॉन्ग दो श्रेया घोषाल एक वाम आउट द फिल्म सनक, आउट द फिल्म टाइगर जिंदा है कम दाग सॉन्ग दो आतिफ असलम दिल दिया गल्ला।

मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे, जो अभी से डर गए तुम, बस अयोध्या फिल्म हमको दीवाना कर गए। अयोध्या फिल्म फना कोमदा खसंग दौर कैलाश खेर एंशान चांद सिफारिश जो करता हमारी।

तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

अभी अभी आपने सुना के की आवाज में फिल्म जिस्म 2 से, और अब आप सुनिए फिल्म शोर इन द सिटी से श्रेया घोषाल और तोची रैना की आवाज में साइबो।

गुलाबी स्काई फिल्म द स्काई इज पिंक से आपने सुना। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए दिल विल प्यार व्यार से। हरी हरन और अलका याचनिक की आवाज में आप सुनिए तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं।

हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की सारी रस्में हम तोड़ चले। इस अर्ध फिल्म अजनबी खजानदार आर डी बर्मन, लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार, वासुदेव लीचे रेडियो SBS इन het programma गीतों की लहर। एंड अर्ध फिल्म बागी 3 komt gezongen door शान एंड रोचाक, तुझे रब माना है।

ये लड़की बड़े ड्रामे बाज है, बस और द फिल्म सूरज पे मंगल भारी है, एंड और द फिल्म लव मैरिज कम्स हो गीता दत्त, करीब आओ ना।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मेरे हाथ में तेरा हाथ है इस आउट द फिल्म फना एंड आउट द फिल्म रूही आफ्ता इस फॉर्मेट लीजिए फिर आर आदिवासी बीएस किस्तों।

फिल्म गुड न्यूज से आपने सुना बी प्राक की आवाज में माना दिल गाने के बोल थे, और अब आप सुनिए शमशाद बेगम की आवाज में कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर।

तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आपने सुना मन्ना दे की आवाज़ में बेहतरीन गाना फिल्म सीमा से, और अब आप सुनिए आतिफ असलम की आवाज़ में। गाने के बोल है तेरा हुआ और फिल्म का नाम है लव यात्री।

हेलो, मैं हरी पिया हुई तेरी जीत रे। गीता दत्त की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म आर पार से। ये है प्रोग्राम गीतों के लहर रेडियो SBS के जरिए से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। गाने के बोल है निमोड़ा निमोड़ा। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सुनिए ये बेहतरीन गाना।